आपके अंदर हम तन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह तू शहन शाह शहन शाह है तेरे समान संसार विच होर कोई

सच्चे पातशाह तू सब दी मदद करन वाला है। जिस दी मदद कोई नहीं करदा उस दी मदद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह करदा है। और आप दी मदद अकाल पुरख वाहेगुरु आप करदा है। साथ जगत बोलो श्री ना सुनो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एक दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह आख्या धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु दा खजांची है। जो अकाल पुरख वाहेगुरु दे खजाने विच बख्शीशा हन तू उन्हां नू वंडन वाला है। साथ सगत बोलो श्री हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं ए धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु नू जानिया है इस वास्ते संसार विच तू महाराजिया का महाराज है। तेरे वर्गा संसार विच कोई होर महाराज कोई राजा है ही नहीं। इस वास्ते मैं सारे संसार नू छड़ के तेरे चरणों विच आया हां।

मेरी चोली किसे ने नहीं पड़ी, इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी, ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर के जांदा है। सत सहित बोलो श्री, इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु।

देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया का दिलों का हाल जानता है, क्योंकि तू अंतर जामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाण। देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिब दे साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज का मालिक है, संसार का मालिक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पाणी नू मनन वाला है। सात संगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते होर कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जदो आनंदपुर का किला उजड़ गया, पीछे मुगल सेना लगी हुई, 500 दे करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदों अमृत वेला होया ते साहब जी ने आखिया, भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुनिया, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनी है तां सानू कीर्तन सुनाओ। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे, पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा का भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हैं नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ, ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दे सारे हो, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे। सत संगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुद। साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणा विच शीश चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए ने कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, और गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता जी। साहब जी कहन लगे, दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी

जे जे देख इस तन में तारे जेड़े अपने तन लोगों नु पसाण वाल के अपना तन भेखी बनाउणगे जे जे देख इस तन में तारे ते प्रभ जन किछ कह ना बिचारे समझ लियो सब जन मन माही इत फिर सब अखर आ गया समझ लो सब जन मन माही डिमन में परमेश्वर नाही जे जे कर्म कर डिम दिखाई तिन पर लोगन मो गत नाही परलोक च उन्होंने गति बिल्कुल नहीं मिली जीवित चलते जींदिया होया वह बड़े सुखी रहेंगे क्यों के अमीर अपनी माया दे के उन्होंने सुख देंगे जीवित चलते जगत के काजा स्वांग देख कर पूजत राजा स्वांगन में परमेश्वर नाही स्वांगन में परमेश्वर नाही खोज करे सभी को काही किथे जी परमेश्वर अपना मन कर मुझे आना जिन्हें अपना मन अपने हाथ च पकड़ लिया पार ब्रह्म को तिने पछाना महाराज भेखी ने उन्हों का की हाल होएगा तो उन्होंने चेलिया का की हाल होएगा लो फिर हम सारे पढ़ियो

जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। लोग कैंची ना मुंदे है, ये धर्म की कैंची ना मुनी जांदा, लोगन लुटी जांदा। जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। नासा मूंद करे प्रणाम, नासा मूंद के नमस्कार करन दिया। नासा मूंद करे प्रणाम, फोकट धर्म ना कौडी काम। ये कुछ हिस्सा राधा स्वामी च है कि इंद्रिया बंद करके ते अंदर कूं कूं सुननी। नासा मूंद करे प्रणाम, फोकट धर्म ना कौडी काम। फोकट धर्म जिते जग करी, नरक कुंड पीतर ते परी। हाथ लाए सुर्ग ने जाऊ। एक्टिंग करनी अनेक प्रकार की। हाथ लाए सुर्ग ने जाऊ, जो मन जीत सका।

जे जे बाद करत अहंकार, जे जे बाद बाद झगड़ा अहंकार वाला झगड़ा जी होमे वधे। कई बार परमार्थ की विचार करद होमे वध जाती, वेख्या ना मैं जित लिया, मेरे सामने कू नहीं सकिया, बोल नहीं सकिया, मेरे सामने ताकत नहीं पई कि दूजी गल कर सके, वेख्या जितया। कहिंदे उत्थों रब उत्थों चला गया, जिसने आ चीज आखी उहदे कोल रब चला गया। जे जे बाद करत अहंकार, तिन ते भिन्न रहत करतारा, जान लियो हर जन मन माई, बेदक देव बिखे हर माई। ए झगड़ा मत करो, इत्थे ते रब है ही नहीं। बेदक देव बिखे हर माई, जान लियो हर जन मन माही, आंख मूंद को डिंब दिखावे, अंदर की पदवी कह पावे, आंख मीच मग सूज न जाई। ऐस दुनिया का रास्ता नहीं दिसता, अगला कौन वेखेगा। आंख मीच मग सूज न जाई, ताहे अनंत

जरूर था, अब है और आगे हुए हैं। पूछा महाराज तुहाडा गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह साहब नूं पूछा गया तुहाडा गुरु कौन है, कहिंदे आओ मैं तुहानूं अपना गुरु दसां। कोट किंदर करे जे के, जिन्हें करोड़ा इंद्र बनाए ने, कोट के इंद्र करे जे के, कई कोट उपिंद्र बनाए खपायो, दानव देव फनिंद तारा तार, भूत भविख उपाय मटायो, आज लगे तपसा दिता है शिव ऊ ब्रह्मा किछ पार न पायो। आज तक शिवजी ते ब्रह्मा जिन्हां दा तप करदे ने ते उन्हां दा अंत दा पता नहीं लगा। आज लगे तप साधत है शिव ऊ ब्रह्मा किछ पार न पायो, वेदक देव वेदक देव ना भेद लख्यो जे।

जे गौसी मिया बहन मैं करत जगत ते गए महापुरुष कहूं ना पछाना किसे नहीं पहचानी कड़ी महापुरुष कहूं ना पहचाना कर्म धर्म को कछु न जाना ना कर्म दस्या चंगा ते ना धर्म दस्या आख्या पूजा मेरी करो बस अवरन की आसा किछ नाई एक आस तरो मन माही कहते होर किसी की आस ना रखो बिना अकाल पुरख तो अवरन की आसा किछ नाई एक आस तरो मन माही आन आच आस उपजित कछ नाई वाकी आस तरो मन माही कोई परत पुराण को कोई परत पुराण कान सख्त बचाए के फोकट धर्म निदान कोई कुरान की पूजा कर रहा है कोई कुरान पढ़ रहा है हजूर कहते दोवे धर्म फोकट ने और इन्होंने अंत वेले साथ नहीं देना कान सख्त बचाए के फोकट धर्म निदान कई कोट मिल परत कुराना बाचत किते पुराण अजाना अंतकाल कोई कामना आवा दाव काल काहू न बचावा अंतकाल।

फेर करो भाई पूजा, फेर करोड़ रुपया इतने वार दिता जाए ना तो आ जरा सुख है उन्होंने नहीं लभ सकता जरा तो प्राप्त हो गया। आओ पे शुक्र आके धनवाद करिए, गुण गाइए, साडा आया हुआ सफला हो जाए।

0: You're listening to CNET Radio.
1: जय जय वंती महला नावा धन गुरु तेग बहादुर शह।

रक्षा दे चरण पारस हन। जे लोहा पारस नाल छुआ देइए तां ओ लोहा नहीं रहिंदा सोना बन जांदा है। गुरु नानक दे चरण ऐसे पारस हन जे इस दे नाल लोहे नूं भी छुआ देइए तां लोहा भी पारस बन जांदा है। साथ संगत बोलो श्री पारस पेट पए से पारस। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती तां उसकी मनोकामना पूरियां हो गईयां। जे गुरु नानक दे दर दी सेवा किसे ने निष्कामता दे नाल कीती तां ओह गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। सत संगत बोलो श्री धन। गुरु नानक सच्चे पातशाह शामा दा दीवान सजे है ताइए एक प्रेमी आके साहब जी दे चरणा विच एक टका मथा टेकया। गरीब बिचारा जितनी बिचारे दी बित सी आके एक टका जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरणा विच रखिया तां साहब जी ने ओ टका लैके अपनी तली ते रख लिया। कोल बैठे सन बाबा श्री चंद गुरु नानक सच्चे पातशाह दे वड्डे सपुत्र। आख्या बेटा श्री चंद दसो साड़ी तली विच की है। तां बाबा श्री चंद जी कहन लगे पिता जी तुहाडी तली ते एक टका ही तां है। हुणे सिख आया इसने तुहाडे अगे एक टका मत्था टेकिया जो तुसी अपनी मुठी विच रख लिया। अपने छोटे पुत्र लक्ष्मी चंद जी कोलों पुछया बेटा तू दस साड़ी तली ते की है। कहन लगे पिता जी एक टका ही तां है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सारी संगत कोलों पुछया सात संगत तुसी दसो साड़ी तली ते की है। सारे ने आख्या गरीब निवाज एक टका ही है। ताइए सेवा करदे होए भाई लैणा जी उत्थे आए कादी पंड सिर तों एक पासे रख के संगत विच जिथे जगह मिलदी सी बैठ गए। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भाई लैणा जी नूं कोल सद्या आख्या लैणिया इत्थे आ जी गरीब निवाज लैणिया तू दस बई साडी तली ते की है। सत संगत बोलो श्री भाई लैणा जी दे हथ जुड़ गए बेनती कीती गरीब निवाज मैं कौन हां के दसां के तेरी तली ते की है। नहीं लैणिया दस बई जो वेख्या ही ओही दस। तां भाई लैणा जी हाथ जोड़ के कहन लगे गरीब निवाज आप दी तली ते 14 लोकां दी पातशाही है और जे ए मेर परिया हाथ तू जिस दे सिर ते रख देवे ना ओ 14 लोकां दा पातशाह बन सकदा है। सत संगत बोलो श्री हां भाई गुरु नानक दे जिसने जिस भावना नाल गुरु नानक नूं पूजिया गुरु नानक ने उसनूं ओ जिहा फल दिता। इत्थे तां सिदक और प्यार दी गल है। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर ते जितना कोई वड्डा सिदक दा झोल लै के आएगा उतनिया ही बख्शीशां दी दातां गुरु नानक कोलों लै के जाएगा। सत संगत बोलो श्री इस वास्ते पंजवें पातशाह कह रहे हैं

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आ जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मगर मगर संगतां, मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ घरां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां नूं। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां नूं। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरा ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, ओ सोने दी मोरा वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरा चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोला जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नूं, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच पार के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही चोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नूं चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनूं छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावां, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने पाई लैणे नूं कोल सदिया,
अपने हृदय नाल ला के पाई लेने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लेनिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तो मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं।

कौन कर रहे है? ए बेनती कर रहे है भीखम शाह, जो जात का मुसलमान है, पंजाब की धरती का रहण वाला, आज भीखम शाह जदों सुबह नमाज अदा करन लगा, भीखम शाह दे नाल सारे मुरीद भी सन, और जिस वेले पश्चिम वाल भीखम शाह नमाज पढ़न वास्ते खड़ा होया, तां भीखम शाह नू अदुति प्रकाश दे दर्शन होए, तां भीखम शाह ने सजदा पश्चिम वाल करन दी बजाए पूर्व वाल कीता। सारे मुरीद पुछन लगे, आ भीखम शाह जी, आज तक तुसी रोज इतनी उम्र बीत गई, सजदा पश्चिम वाल करके नमाज अदा करते हो, क्योंकि हर एक मुसलमान पश्चिम वाल सजदा करके नमाज अदा करता, ते आज तुसी पूर्व वाल क्यों सजदा कीता? तां भीखम शाह कहन लगा, जिस खुदावंद नूं मैं रोज पश्चिम वाल नमाज अदा करदा सां, आज उसने पूर्व दे विच पटने शहर दे विच जन्म लिता है। साथ सगत बोलो श्री वाहे। सारे मुरीद हैरान रह गए। भीखम शाह कहन लगा, हां जे मेरे ऊपर विश्वास नहीं तां फिर सारे चलो पटने दी धरती ते, किथे बिहार दी राजधानी पटना, किथे पंजाब पटियाले दे कोल रहण वाला भीखम शाह अपने मुरीदां नूं लै के उस

0: वेले कोई रेल गड्डियां दे साधन नहीं सन, एक घोड़सवारी दे साधन होया करदे सन। अपने मुरीदां नूं नाल लै के कितने दिन यात्रा करदा होया जदों भीखम शाह उस स्थान ते आ पहुंचिया जिथे माता गुजरी दी कुख विचों धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दे घर गोबिंद राय जी प्रगटे। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शन करन भीखम शाह पंजाब तो तुर के पटने दी धरती ते आया और आके अरदास कीती के मैनू एक वरा उस बालक दे दर्शन कराओ जिसने तुहाडे घर जन्म लिता है। माता गुजरी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे माता जी। माता गुजरी जी कहन लगे अजे साडा जो ए लाल है बहुत छोटा है, ए बालक छोटा है, असी अजे 40 दिन भी नहीं होए इनू बाहर नहीं कढ़ना, किते नजर ना लग जावे किसे दी। भीखम शाह कहन लगा मैं ता होर कुछ नहीं मंगदा, तुहाडे कोलों पैसा नहीं मंगदा, कोई पदार्थ नहीं मंगदा, मैं ता इतनी दूरों चल के आया हां अपने मुरीदां दे नाल सिर्फ इस वास्ते के एक वरा मैनू गोबिंद राय जी दे दर्शन करा दे। साथ संगत बोलो श्री
1: वाहे।
0: ता मामा कृपाल चंद, मामा कृपाल जी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे मामा सन, माता गुजरी दे पाई। कहन लगे चंगा तेनू दर्शन कराउंदे हां फकीर, आ भीखम शाह तेनू दर्शन कराउंदे हां क्योंकि तेरे मन विच जो प्यार है ओ सच्चा प्यार लगदा है। मामा कृपाल जी गोबिंद राय जी नू दुशाले विच लपेट के जदों लै के आए दलीजां विच खड़ोते होए आख्या इथों ही दर्शन कर लो। अजे गोबिंद राय जी नू दलीज विचों बार कढ़न दी आग्या नहीं मिली, दुशाले विच लपेटे होए जदों गोबिंद राय जी दे सोहणे मुखड़े दे दर्शन कीते भीखम शाह ने, तां भीखम शाह ने आख्या तू ओही है जिसनू मैं रोज 5 वरा नमाज पढ़ के मनाउंदा रहा, तू गोबिंद राय उस अल्लाह दा रूप है। साथ सगत बोलो श्री
1: वाहे।
0: वेखण वालियां अखां जो मिल गईयां जिसनू भी प्रभु दे वेखण दियां अखां प्राप्त होईयां उसे नहीं पछाणिया। भीखम शाह डंडौत विच पै गया, जितने मुरीद नाल आए सन उना दे मन विच संसा आ गया, संकोच आ गया कि असी भीखम शाह दे मुरीद हां लेकिन भीखम शाह ए की कर रहे, एक बालक अगे मत्थे टेक रहे। तां भीखम शाह कहन लगा अपने मुरीदां नूं के तुहाडे मन विच इस बालक दे वास्ते संसा आया तां मैं हुणे दूर कर देंदा। 2 मिट्टी दी कुजियां मंगाईयां, भीखम शाह ने एक मिट्टी दी कुजी विच मिश्री पा के सज्जे हाथ विच रख लई, एक मिट्टी दी कुजी मिश्री पा के खब्बे हाथ विच रख लई और अपने मन विच ए संकल्प कीता और मुरीदां नूं दस्या के भई असी ए दोनों कुजियां हाथ विच लै के बालक दे अग्गे खलोवांगे, जे तां इस बालक ने सज्जी कुजी उते हाथ रखिया तां असी समझांगे ए हिंदुआं वास्ते आया है, जे इसने खबी कुजी ते हाथ रखिया तां असी समझांगे ए मुसलमाना लई संसार ते आए। जदों भीखम शाह दोनों कुजियां लै के गोबिंद राय जी दे अगे खलोता, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह अजे बालक रूप विच सन तां आप दा नाम गोबिंद राय सी, दोनों हथां दी कुजियां लै के जदों भीखम शाह खड़ोता गोबिंद राय जी दे अगे तां गोबिंद राय जी ने दुशाले दे विचों अपने दोनों हाथ बाहर कढ़ के उन्हां दोनों मिट्टियां दी कुजियां उते रख दिते। साथ सगत बोलो श्री
1: वाहे।
0: ਬੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਇਹ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੋਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਅਸੀਂ

गोविंद राय जी कुछ वड्डे होए, चार पांच साल दे लगभग आप दी उम्र, रोज छोटे छोटे बच्चियां नू नाल लेके ते गंगा दे किनारे खेलने जाउंदे सन। इस गंगा दे घाट ते शिवदत्त पंडित नाम करके एक पंडित तपस्या करया करदा सी। 70 साल दी जिस दी उम्र, श्री रामचंद्र भगवान जी दा उपासक सी। रोज मूर्ति श्री रामचंद्र जी दी अगे रख के, प्रसाद अगे रख के अरदास करदा सी, हे भगवान भोग लाओ। और इस शिवदत्त पंडित नु एक बार अपना दर्शन दियो प्रभु। रोज अरदास करे कि इतनी मेरी उम्र हो गई, हुण मैं बुढ़ा हो चलिया हां, एक बार अपना दर्शन करा दियो। किते ऐसा ना होवे के तेरे दर्शन कीतियां बगैर ही इस देही विचों प्राण निकल जान। सात सिगत बोलो श्री। और फिर मैनू आ तेरे दर्शना वास्ते फिर जन्म लेना पड़े। हे मेरे प्रभु, एक बार दर्शन कराओ। आज जदों अरदास कर रहे है, इसकी अरदास क्योंकि बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। जदों कोई मन नाल प्रेम नाल अरदास करता है, उसकी अरदास प्रभु दे चरणों विच पहुंचदी। गोविंद राय जी खेडदे होए आ गए ते पंडित शिवदत्त नु वेख्या के बेनती कर रहा, प्रभु भोग लाओ, प्रसाद अगे रखिया, लड्डुआं दा थाल भगवान श्री रामचंद्र दी मूर्ति अगे अरदास विच जुड़े है। ताही गोविंद राय जी ने आके थाल विचों एक लड्डू चुक के मुंह विच पा लिया। पंडित शिवदत्त ने देखिया के कोई बालक है और थाल विचों प्रसाद दा लड्डू चुके मुंह विच पा ले, तां पंडित शिवदत्त नूं बड़ा क्रोध आया। कहन लगा, तू कौन है और मेरी पूजा विच विघन पा रहे हैं, जा चला जाए तू, ते फिर कल या दोबारा आके मेरी पूजा विच विघन नहीं पाउणा। साहब जी चले गए बच्चियां नाल खेडदे होए गोविंद राय जी अगे। अगले दिन पंडित शिवदत्त फिर जदों पूजा विच जुड़िया और अरदास कीती, भगवान भोग लाओ, गोविंद राय जी फिर खेलते हुए आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा ले। सात सगत बोलो श्री। आज पंडित शिवदत्त बड़े गुस्से विच गोविंद राय जी दे पिछे पिछे दौड़िया पकड़न वास्ते। अगे अगे गोविंद राय जी, पिछे पिछे पंडित शिवदत्त। गोविंद राय जी दौड़दे हुए माता गुजरी दी गोद विच जा बैठे। कहन लगे, मां जी आ पंडित सानू गुस्सा करदा। ताई पंडित शिवदत्त भी आ पहुंचिया। कहन लगा, ए तुहाडा लाल है? हाँ मेरा लाल है। पंडित जी हुक्म करो, की गल है? माता गुजरी ने पूछया। ता कहन लगे, आज 2 दिन तो मेरी भगती विच विघन पा रहे है। मैं प्रसाद रखदा हां भगवान राम जी दी मूर्ति अगे के प्रभु भोग लाओ ते ए थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा लैंदा। ता गोविंद राय जी कहन लगे, मां जी असी तां इहदी भगती विच कोई विघन नहीं पाउंदे, ए आप ही रोज कहिंदा है भोग लाओ ते असी जदों प्रसाद चुके भोग लाया ते सानू गुस्से करदा है। सात सगत बोलो श्री। ता पंडित शिवदत्त बड़े क्रोध विच कहन लगा, मैं तेनू तां नहीं कहिंदा भोग लाओ, मैं तां अपने इष्ट श्री रामचंद्र जी नूं कहिंदा हां भोग लाओ, ते जे कल तू आया और मेरी भगती विच विघन पाया तां फिर मैं तेनू देख लवांगा। गुस्से नाल बोल के पंडित शिवदत्त चला गया। तीजे दिन मुड़ गंगा दे किनारे जदों आके भगती विच जुड़िया ते थाल प्रसाद दा अगे रखिया ते बेनती कीती कि हे भगवान भोग लाओ। गोविंद राय जी फिर बच्चियां नाल खेडदे आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा लिया। अज पंडित शिवदत्त ने गोविंद राय जी नूं बांह विचों पकड़ लिया, आख्या 2 दिन तो मेरी भगती विच विघन पा रहे, अज नहीं छड़ना। कोल पई सी सोटी, सोटी चुके जो गोविंद राय जी नूं मारन वास्ते चुकी, तां गोविंद राय जी ने चट अपना रूप भगवान श्री रामचंद्र जी दा बना लिया। सात सगत बोलो श्री। पंडित शिवदत्त वेख के हैरान रह गया, भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्हां दा मैं उपासक, इस बालक विचों मैनूं

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आ जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। साथ संगत बोलो श्री और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह मगर मगर संगतां मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ घरां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तो कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करान। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। साथ संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन वो चांदी ते डिग पे, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरां ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे चांदी ते नहीं फिसले ओ सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरां चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोला जागे गए फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नूं, साडे पिछे आओगे तो कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच पार के अपने अपने करां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए सोने चांदियां दे ढेर लाए हीरे जवरातां दे ढेर लाए आ सारे ही चोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नूं चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तो तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात सगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तो पहले इस मुर्दे नू खा। पाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई पाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावा पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। साथ सगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने पाई लैणे नूं कोल सदिया अपने हिरदे नाल ला के
सिपाही लैने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लैनिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तो मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्होंने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं और की कहिंदे हैं।

छह महीने च बौरा कौन है, दीवाना कौन है? तो दीवाना जानिए जा साहेब तरे प्यार। अगली तो प्यार ना सुनना, साहब कहंदे ने मन

0: You're listening to Secret Radio.
1: हर नाक्ष नां दा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान दी भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान दा वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे दा एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफी पान दा हुक्म दिता।

शन तसीहे दे दे के शहीद करन दा इशारा मिल चुके सी। ओ चंदू अपने वालों उसने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। प्रभु परमात्मा दा खौफ भुल गया, अपना आप भुल गया, सिर्फ एक तशद्दद करना ही उसके सामने है। कई तो यह भी कहते ने कि उसने बदला लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जदों चंदू दे भेजे हुए दूतां ने रिश्ता कर दिता और आके दसिया कि गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सहजादे साहिबजादे हरगोबिंद साहिब पातशाह उन्हां नूं रिश्ता दे आए हां, तां हंकार विच हौमे विच मतिया होया ए चंदू, क्योंकि सरकारी दरबारे ये नौकरी करता सी, इनू बड़ा चंगा दीवान दा रुतबा हासिल सी। हंकार विच बोलिया, तुसी चुबारे दी इट मोरी नू ला आए हो, भाओ अपने आप नू उसने बहुत वड्डा दसिया,

बादशाह नूं फिर हकूमत करनी बड़ी औखी हो जाती है। उन्हें तौज के जहांगीर विच स्पष्ट लिखिया है कि मैं चाहुंदा हाँ ये जो झूठ की दुकान गुरु अर्जन देव चला रहे ने गुरु नानक के पंजवें वारस जिस दे उत्ते कुछ हिंदू और कुछ सिरफुरे मुसलमान भी ओदा उपदेश सुनन वास्ते जाते ने, मैं चाहुंदा हाँ कि ये दुकान बंद कर दिती जावे। जिस तो स्पष्ट नज़र आउंदा है कि समय की हकूमत नहीं सी चाहुंदी कि गुरु अर्जन दे रूप विच सच की आवाज़ लोगों के कन्ना तक पहुँचे। वो सच की आवाज़ नूं बंद करना चाहुंदा सी और इसका इल्ज़ाम भी दूजियां दे सिर ते मढ़ना चाहुंदा सी। चंदू दे हवाले करके आप वो कश्मीर वल चला गया। चंदू ने ईरखावश होके ए जुलम करने शुरू किए। चाहुंदा सी कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अगन भड़क उठे, इहदा सिदक डोल जाए, पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज जिन्हां ने अपना पवित्र शरीर ते बलिदान दे दिता पर सिदक नहीं हारिया, शहीदी महल दी नींह रखण लग्या। हजूर ने सब तो पहला अपना शरीर इहदे विच लाया, उहदे उत्ते ते शहीदी महल दी उसारी होई। आप उस अकाल पुरख दे भाणे नूं मनण दा संदेश सारे

ते मैनू नवाजेगा, मैनू मान बख्शेगा। मैं तेरे दर ते आके तेरे अगे पुकार करदा हां कि कृपा कर।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समरथ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करता है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर

बीते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर पावो, डूब दे पत्थर तारे, जोड़ा अगन बराबर तपता, पीतर वगे काती, प्रणवत नानक हुक्म।

जीवन विच नाम तो बिना जो कुछ भी चल रहे है महाराज ने तो तरकार पाई उस भगती तो टुट के भजन तो टुट के नाम तो बेहूणा जीवन एक सजा है। मनुख इस तरह जीवन के इस बोझ नूं ढो रहा है जिस तरह मजबूरी होवे कोई बल्कि ना केवल इस जीवन नूं ढो रहा है बल्कि अगे वास्ते भी ऐसा हो रहा है कि इहदा आउण जाण चक्कर। कबीर जी ने बड़ी खूबसूरत गल कही। कबीर जी कहिंदे ने जे तू इस जीवन विच जो कि इस जीवन का मकसद है वह पूरा ना किया जिस काम वास्ते तेनू जीवन मिले है वो काम जे तू ना किया पता नहीं तेनू किन्नी वारी आना भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो जिवें कहिंदे ने तेली का बलद एक चक्कर च पिया रहिंदा है कोलू दे आले दुआले का चक्कर बनिया रहिंदा है। इस तरह सृष्टि विच महाराज कहिंदे ने आवन आए सृष्टमय बिन पूजे पशु ढोर। जिस बंदे ने अपनी औकात नूं अपनी हस्ती नूं अपने आप नूं कदे वाचन दा जतन नहीं कीता अपने आप ते कदे सवाल नहीं कीता मैं कादे वास्ते हां मैनूं किस वास्ते भेजिया गया कदे ख्याल कीता है। कोई जानवर इन्ना दिमाग नहीं रखता कि वह अपने आप से सवाल कर सके उहदे कोल इन्नी सुरत नहीं कि अपने आप से सवाल कर सके। जीव जंतु जानवर जितने भी पशु ने उन्हां दे जीवन का मकसद कितना क्यों है सिर्फ इतना कि वह साह लेंदे ने जींदे ने घर बनाउंदे ने उन्हां दे बाल बच्चे हुंदे ने उन्हां बाल बच्चिया की पालना दे विच वह अपनी जिंदगी ला दिंदे ने परवाह नहीं करते। कई ऐसे जानवर भी देखने विच आए ने जेडे अपने शरीर के खंभ तोड़ तोड़ के अपने बच्चियां दा आलना बनाउंदे अपने शरीर के खंभ खिच खिच के बच्चियां दा आलना बनाउंदे बच्चियां दे सुख वास्ते अपने शरीर ते तकड़ा दुख लैंदे। और एक मक्खी ऐसी भी देखने विच आई है तकरीबन भौरे जिड्डी जिसकी औलाद जो जिसकी संतान जिसका बच्चा उसके शरीर के विचों जब निकलता है तो उसे नूं खा के पलता ओदे शरीर दे विचों दा बच्चा निकलदा ओदे शरीर दा मादा खा के ओ मर जांदी मक्खी मर जांदी ओदा बच्चा उसे दे शरीर दे अंदर दा मादा खा के ओदे शरीर दे उपर बैठा पलदा फिर उड़ जांदा। ते जे बंदा समझे ना कि श्वास लेना सौ जाना खा के पै रहना औलाद हो जानी ती उस औलाद की बड़ी संभाल हो जानी तू बहुत उचेचा काम कर लिया कुछ नहीं ये तो जानवरां वाला काम उन्हें आलना बना लिया तू घर बना लिया उन्हें कोई खुटकुर ना बना लिया तू कोई महल बना लिया कोई वक्री गल नहीं गल सिर्फ इनी है कि वह जितनिया जूना ने वह सारिया सिर झुका के चलने वाली केवल मनुख सिर उठा के चलने वाली जून यह सीधा तुरन वाला एदा दिमाग उपर नू है सिर उपर नू है इसे करके एक उची गल करदा।

जिन्ना चीजा विचो बंदा पे सुख लभदा कोई नहीं पिया मिलता। एक चीज तो दुखी हुंदा है, दूजी चीज की कामना करता है, फिर ओदे तो दुखी हो जाता है, तीजी चीज की कामना करता है, फिर ओदे तो दुखी हो जाता है। बंदा महंगी चुकी जाता सी ना, कदे वो सजे मोढ़े ते कर लवे, कदे खबे मोढ़े ते। किसी ने कहा की करना है, कदे इधर कदे उधर, कहिंदा इधर ला मोढ़ा दुखन लग पैंदा, उधर कर लेना, वो दुखन लग पैंदा, इधर कर लेना। सच करके जानना जिन्हां नूं असीं सुख समझने आ ना, वो बोझ ने, इस मोढ़े ते रखने आ। कहिंदे आ उधर शायद सुख आ गया, जिधरों चुक लिया उधर सुख आ गया। थोड़ी देर नूं इह मोढ़ा दुखन लग पैंदा, दुख उत्थे दा उत्थे कर। जीवन एक भारी वहिंगी बन गई है, भारा बोझ बन गया है। ये बोझ टल सकता है, ये बोझ सुख च बदल सकता है।

मुस्कराया, हैरान रह गई दौलतां दाई, मेरे हथां विच अनेक बालक पैदा होए, लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है। दर्शन पा के दौलतां दाई धन हो गई। सत सिगत बोलो श्री वधाई दीती से बार आई कोठरी विचों, वधाई दीती मेहता जी वधायों,

ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। साथ सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मैता कालू नू वधाइयां मिल रहियां हैं कि अज अज बालक

भाईचारे का उपदेश है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहते हैं, साच कहो सुन ले लो सब है, सारे सुन लो, साच कहो सुन ले।

तन्ने ने पत्थर जान के नहीं पूजिया, तन्ने ने ता ठाकुर जान के पूजिया। और फिर भगवान नु उस पत्थर विचो तन्ने नु ठाकुर हो के दर्शन देने पे। साथ संगत बोलो श्री ए है भाई, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। जिन्होंने भी प्रभु दे चरणा नाल प्रीति कीती है प्राप्ति भी उन्हां नु होई है। और जो प्रेम तो वांझे हन, जो प्यार तो खाली हिरदे हन, उन्हां हिरदियां विच कदे गुरु चरण नहीं टिकाउंदा। इस वास्ते धन गुरु

प्रसन्न होए। भाई सहदे दा प्यार वेख के हिरदे नाल आया, आख्या भाई दया सिंह देश नूं मोरां इहदी गरीबी कट दे। भाई सहदे ने हाथ जोड़ के आख्या गरीब निवाज मैनू धन नहीं।

सिफ्ट साला करने वाला, कीर्ति करने वाला, उसनु गुरु महाराज ने ढाडी का नाम दिता है। इतिहास विच पुराने ग्रंथा विच जिक्र आउंदा है कि भगवान की उस्तत करने वाला जो हर वेले अपने हत्थां दे विच वीणा लैके रखदा सी, जिसका नाम नारद करके आया है, हर वेले प्रभु की उस्तत करदा सी, कीर्तन करदा सी परमात्मा। एक वे नारद भगवान ने प्रभु कोल एक सवाल किया, है भगवान जे तेरे दर्शन करने हो तां दस किथे तेरे दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि तेरे दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। प्रभु का मिलाप पावे कोई आखे के हथा दियां हथेलियां दे विचकार दर्शन करा दें, कोई आखे त्रिकुटी चढ़ा के तेन दर्शन करा दें, कितने ही कर्मकांड करके कोई आखे के दर्शन हो जान, ये नामुमकिन है, ये पखंड है, कर्मकांड है, इंज दर्शन नहीं होंगे उसके। ओदे दर्शन भगवान नारद कहते हैं कि ऐ परमात्मा तेरे दर्शन करने होण तां कित्थे दर्शन करा, तां कहते हैं कि भगवान ने उस वेले कहा, ऐ भगत जे मेरे दर्शन करने हो ना मैं किसे दक्षण विच वसदा हाँ, ना किधरे पश्चिम विच वसदा हाँ, अते ना ही किसे खास स्थान ते मेरा वासा है, ना मैं मंदिर विच हाँ, ना किसे मस्जिद विच, ना किसे गुरुद्वारे विच, ना किसे गिरजे विच, जेड़ा मैनू इन्हां थावां ते लोड़दा है वो भरम विच है, जे मैनू लभना होवे तां मैं जिथे संगत प्रभु दे भगत जन बैठ के कीर्तन करदे होवन, उन्हां दियां जिथे जुतियां पईयां होवन, उन्हां दी जुतियां दी थां दे उत्ते उन्हां दी चरण धूड दे विच मेरा स्थान। भगवान अपने भगतां दे वस है, उन्हां दी संगत भगत जिहड़े हन भावें जिथे मर्जी उस नूं प्रगट कर लैण, भगत ने चाहिया तां पत्थर दे विचों वी प्रगट कर लैण, जे भगत ने चाहिया तां उस परमात्मा कोलों अपनी खेती दे विच हल भी जुताया, अपने डंगर भी उस कोलों चुगवाए, ए भगतां दी खेड है जिन्हां नूं प्रतख दर्शन हुंदे हन उस वाहगुरु दे। परमात्मा ने कहा है, ऐ नारद मेरा घर मेरा स्थान साध संगत दे विचकार है, उस तो सिवा मेरा कोई स्थान नहीं। जिहड़े उस्तत करदे हन, सिफत सालाह करदे हन, इक मन होके जपदे हन, कीर्ति दे विच जुड़े हुए हन, निष्कपट होके, निर्छल होके, निस्वार्थ होके जिहड़े कीर्ति करदे हन प्रभु दी, उन्हां नूं मैं प्रतक अंतस्करण रूप विच अंतर आत्मे दर्शन देंदा हां, उत्थे मेरे दर्शन हुंदे हन। और भगत नारद इतना प्रभु का निकटवर्ती सी, प्रभु की प्रसन्नता सी उस भगत नारद उत्ते, क्योंकि वह कीर्ति करन वाला सी। तो गुरु महाराज ने गुरबाणी दे विच कीर्ति करन वाले नूं, कीर्तन करन वाले नूं, सिफत सालाह करन वाले नूं ढाडी का नाम दिता है। आखदे ने गुरु पातशाह

की परियोजना लेके आया है। अगों गुरु पातशाह जी ने एक सवाल किया, एक मंग की थी।

ऐसा सवाल लेके एक वेद गुरु नानक भी अपने कर्ता पुरख वाहिगुरु दे उस पवित्र स्थान ते पहुंचे सन। लोकां ते भावें उस वेले समझिया सी कि गुरु नानक वेई नदी दे विच इशनान करन दे बहाने डुब के मर गया, क्योंकि मोदी खाने का हिसाब तेरा तेरा करके लुटा दिता। जदों हिसाब मंगिया गया होगा उस वेले बहुत सारा घाटा जिस वेले नजर पिया होगा, तो गुरु नानक वेई नदी विच डुब के मर गया। ऐसी ना समझ लोकां दे ख्याल जिन्हां ने कदे गुरु नानक नूं पछाणिया तक नहीं, लेकिन जिन्हां ने पछाणिया जिन्हां ने गुरु नानक नूं जाता, बेबे नानकी कहिंदी है मेरा गुरु नानक जेड़ा डुब्या नूं तारन हार है वो आप किवें डुब सकदा है, उहदा इह कोई कौतक है। और सचमुच जदों तीसरे दिन फिर गुरु नानक प्रगट होए और उस वेले संसार दे सामने एक ऐसा पैगाम लेके आए

जो गुरु नानक नु सब तो पहला मिलया सी। जिस वेले पहुंचे सन गुरु नानक और प्रार्थना की अपने निरस्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणा विच, भाई गुरदास जी अपनी पवित्र बाणी विच कहंदे हन।

कोई रिश्वत खोर हो गए ने। ओही करम धर्म नू भुला के सच नू छड़ के झूठ दा बुरका उड़िया होया है और ए हालत हुई है।

कोई ऐसी वस्तु दे जिसनू मैं संसार दे कुल्ले पटके लोकां नू जाके वरता सकां। अरदास करते हैं

तेरी बख्शिश उत्ते मेरी मेर, जिसते तेरी कृपा उसते मेरी नजर। मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुरु परमेश्वर। जा संसार की मेरा नाम जपा, सड़दे बलदे लोकां नूं ताकि शांति आ जाए। गुरबाणी विच महाराज ने फरमान किया है कि ऐसा अमूल खजाना बख्शिश किया उस वेले जदों के गुरु नानक पहुंचे सन अपने उस मालिक।

गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्होंने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे एक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा नदी

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जाती। साथ संगत बोलो श्री दुर्दे हो पिछली प्यारी अद्दा।

के बादशाह पिठ हो रही है हुण इत्थों दी, मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना व्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी, सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच भावना लिया के आके गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी इशनान दी सेवा करनी।

जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अदे

संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो कोई तीन कोई दस कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां जो समर्थ है, जो मेरे सारे कार्य

सतगुरु को बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नर मुन जन लोच दे सो सतगुरु।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है जिसकी बहुत सी कारें हैं, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं? नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख छमे दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी कि गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने शीपा सलार नू हुकम दिता भई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उसनू भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकत है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ

राज अभी धन अधिक करियो ए शब्द भगत नामदेव जी दा उचारे होया। इस शब्द दे विच परमेश्वर दे नाम दी वड़ियाई अते भगतां दे नाल उस परमेश्वर दा प्यार इस शब्द तों भगत नामदेव जी सानू ए उपदेश देंदे ने, ऐ इंसान अगर तू परमेश्वर दा नाम जपेंगा ओदी ओट ओदा आसरा लवेंगा इन्हां भगतां दी तरह ओ परमेश्वर तेरी भी रखिया करेगा तैनू ओ परमेश्वर हर सुख हर वड़ियाई अते अपने नाम दे नाल भी जोड़ेगा और अपने वर्गा बना लवेगा। इस शब्द दे विच अनेका महापुरुषां दा जिक्र नामदेव जी ने कीता है, पर आपां भगत अमरीक दे जीवन बारे विचार करांगे। भगत अमरीक एक बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजे हुए ने। राजे भी सन पर राजकुमार दे नाल भगती भी कमाई जिदे सदका अज आपां उन्हां दे जीवन बारे विचार कर रहे हैं। नामदेव जी बयान करते ने अमरीक को दियो अभय पद, भगत अमरीक नू अभय पद की प्राप्ति हुई, जन्म मरण के चक्कर तू ओरहत हो गए। राज पवीखन अधिक करियो, जिस तरह पवीखन नू श्री रामचंद्र ने रावण नू मार के लंका दा राज दिता, क्योंकि जेड़ा भी भगत होंदा है उनू सुख परमेश्वर दिंदा है। इसे तरह जेड़ा अमरीक भगत है इनू भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दिती, भगतां दी पदवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सवैये महल्ले तीजे के जिदे विच अमरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह जिक्र कीता है।

कि जिस तरह नाम सिमर के सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए, नाम नाल लग के इसे तरह अमृत पवजल तरिया भगत

अम्बरीक मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा रिखी आया, अम्बरीक नाल मेल होया ते हुण

हस उपारना ओठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा रिखी नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना वर्त तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बचत। ए दुर्भाषा रिखी नदी ते पहुंचया इशनान कीता पर है ए मन मर्जी दा मालक दुर्भाषा रिखी चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापद हुण दुर्भाषा रिखे नहीं आणगे क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता जे दुर्भाषा जी ने प्रशादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नू बुलाया सारे कहा समा बीता जा रहा दुर्भाषा रिखी नहीं आया या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो अन्न ना खाओ पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया उधर दुर्भाषा रिखी आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते ने चरणों तक पेख चरणों तक लै पेख ओ सराप देवन नू ताया। जब दुर्भाषा ने देखिया कि इन्हें वर्त तोड़ लिया तो वह सराप देने वास्ते तैयार हो गया। अखां गुस्से नाल लाल हो गई है। कहन लगा राजन तू मैनू भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है मैं तेनों जिंदा नहीं छड़ना इहदी सजा देवांगा श्राप भी देवांगा। राजे ने कहा महाराज मेरा कसूर नहीं देर होने कारण विद्वाना की सलाह ते मैं वर्त तोड़े है पर दुर्भाषा रिखी ने एक ना सुनी अपनी एक लिट पुट के वाला दी उन्नू मसल के सुटिया जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई जिदे हाथ विच तलवार है और दुर्भाषा रिखी ने हुक्म कीता उस चड़ेल नू जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती चड़ेल नू कहा ए जड़ा राजा अमरीक है इन्हें मेरा सत्कार नहीं कीता इन्हें वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला इस करके तू इसनों खत्म कर।

अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के विच दर्ज है।

कि परमेश्वर का जद मिलाप हुंदा है फिर इंसान की अवस्था की हुंदी है और परमेश्वर का मिलाप गुरु करांदा है और ए देव

तीन बंदा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओह प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है। जगत दे जी जंत मानो उस रुख दियां बेअंत डालियां टहणियां हन, जो फुल्लां पत्तरां ते रस भरे फलां नाल लदियां होईयां हन। इह संसार अमृत दी इक बगीची है, जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें इक पौरा फुल दे रस विच मस्त हो के फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओह गुरमुख नाम रस विच मस्त हो के पूर्ण खड़ाऊ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणां विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच उस दे अंदर कोमलता रूप मानो एक कोमल बूटा उगदा है, जो उस दे शरीर दी तृष्णा नूं सुका दिंदा है। कबीर साहब कहिंदे ने, मैं उस इंसान दा उस गुरमुख दा दास हां जिसने अपने अंदर उग्या होया एक कोमल बूटा देखिया। साध संगत, ए ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था दा शब्द है जेड़ा इस कहानी नूं जान लैंदा है कि परमेश्वर दे नाल गुरु मेल करांदा है, और परमेश्वर दे नाल जद मेल हो जाए ते फिर ओ इंसान की

परमेश्वर का रूप नहीं समझता। इसे वास्ते ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे। इसे वास्ते इंसान इंसान के नाल नफरत करता है। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर पूरा गुरु मिल जाए वो इन्हों गलों की सोझी कराता है कि ऐ इंसान इस संसार परमेश्वर का बनाया होया है, ओदे बनाए हो जीवा नाल प्यार कर, कोई भी बेगाना नहीं। पर इन्हों गलों का उदों पता लगता है जदों अंतर जोत राम प्रगासा, जदों अंदर राम नाम की जोत जग जाए। पर यह जोत किस विरले दे अंदर जगदी है, ते कबीर साहब ने कह दिता, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैं हुण इस कहानी नू जान ले है कि इह सारा संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, इसे वास्ते ते मैनू कोई बेगाना नजर नहीं आंदा।

क्योंकि बाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे बेतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदे, ते गुरु कहंदे तुसी मैनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विलालो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो वो परमेश्वर तू भुलिया होया। तो जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच, समझो ये परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ये परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। ते सतगुरु जी कहंदे ने ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके उहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है तां परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हैं

इतना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे, सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे, तावी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बार आप देखते हैं एयर कंडीशन कमरे होंदे ने, पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा होंदा है गुस्से दे नाल, उहदे मन नूं चैन नहीं होंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच होंदा है, अंधेरा केड़ा? अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान ए है कि दूसरे दा हक मैं खावां, अपनी सुख वास्ते दूसरे दा हक खाना, दूसरे नूं दुख देना, ए है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान ए है कि भाई सारे विच परमेश्वर है, सारे विच खुदा है, वाहिगुरु है, जे सारे विच ओ है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोची

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नू जान लैंदे ने कि सारे विच

मंजिल तक नहीं पहुंचते। गुरु की लोड़ इसे वास्ते है कि सच्चा उपदेश साढ़े हिरदे विच वसे, पर गुरु की प्राप्ति निम्रता प्यार और सेवा नाल हुंदी है। होता ते ब्रह्मा दो भरा सन, दोनों भगत ने, भगती दोनों भरा करते ने, किसे धनी पुरश ने दोनों भरावां नूं भगत जान करके अपने घर बुलाया। भगती ते करदे ने पर हाले गुरु दी प्राप्ति नहीं। दोनों जने तानी सेठ दे घर पहुंचे। उस तानी पुरश ने दोनों भगतां दी सेवा कीती, अन्न जल छकाया और तुरन लगे हैं दोनों भरावां नूं दक्षिणा दीती, माया भेट कीती। होता वड्डा सी, वड्डे नूं वड्डा समझ के चोखी माया। ब्रह्मा छोटा सी, छोटा समझ के थोड़ी माया दी, पर ब्रह्मा चलाक सी। उन्हें दोनों पेटावां कठियां कर लिया। घर आके अद्धी अद्धी

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू ले, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। पावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए दे आपा कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं, देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चाह, बहुत घट हुंदे हन सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पए। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनों भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा, ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तैनू गोते दे दे के मारांगा, और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दित्ता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नू भगती दे थां तू थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्त हाथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे। गज पत पार उतारे अनेकां शब्दां विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, यह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंघते आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले, और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा, ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है, इसने जोर लाया। कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए का जोर चलिया, ते हाथी नूं खिच के ओ पानी दे

ता विष्णु भगवान ने एना दे बंधन कटे तंदुए नु भी मुक्त कीता, इस हाथी नु भी मुक्त कीता के दोनों प्रा होता दे ब्रह्मा। पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं सी, भगती करते सन पर माया का लालच मन विच हटिया नहीं सी, इसे वास्ते इन्हां नू इतना दुख भोगना पिया। और जद भगवान मिलिया ते फिर मुक्ति नू प्राप्त होया। इसे शब्द दे विच धन गुरु रामदास जी जिथे इन्हां दोनों भरावां का जिक्र करते ने कि माया पिछे सराप दे के दोनों ने जोड़ना पाईया, दुख हो गया पर फिर सिमरन कीता ते भगवान ने इन्हां दा पार उतारा कीता। इसे शब्द विच सतगुरु जी फरमांदे हन, बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे है। भाई इन्हां कथा कहानियां नूं सुन, गुरु दी बाणी ये कथा कहानियां तेनूं दस रही है, इन्हां तू सिखिया लै। झगड़ना फिर माया पिछे झगड़ा, पर माया बड़ी मिठी है। साहब जी फरमांदे ने, पापा बाजो होवे नहीं मोया साथ ना जाई। पापा तो बगैर माया बहुती कट्टी नहीं होंदी, ते जद इंसान मरदा है ते ए नाल भी नहीं जांदा। सतगुरु जी फरमा रहे ने, सुन ए बाण, मन विच प्यार रख, जिन्नी भज नठ माया वास्ते करदा है अगर सिमरन करें ते सिमरन सदका तेरी कमाई विच बरकत पवेगी। ए माया ते कुछ भी नहीं, सिमरन करेगा ते परमेश्वर दी जोत तेरे अंदर जग जाएगी, ओदे नाम दा प्रकाश हो जाएगा, ते फिर तू जिधर भी देखेगा तेनू परमेश्वर नजर आवेगा। इन्हां भगतां दी तरह पर एक बारी तू भी कह उठेगा, ए भाई जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैं भी परमेश्वर दी कहानी नू जान लिया कि ए संसार परमेश्वर दी बनाई हुई खेड है। परमेश्वर